यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

प्रार्थनायां वयं श्री गणेशं श्री सरस्वती देवीं गुरुणां च नमस्कारं कृतवन्तः। इदानीम् अभ्यास समयः आगच्छन्तु। अद्य सूर्य नमस्कार विषये पठामः। संस्कृत शब्दाः भवन्ति नमः, पुनः प्रश्नवाचक शब्दाः तु कदा, नूतनः शब्दः किमर्थम्। आइए आज सूर्य नमस्कार विषये बात करेंगे। आज का एक नया शब्द है नमः और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द होगा किमर्थम्। आप कदा का भी अभ्यास करेंगे। सुमंतः बालकः, सः प्रातः काले पंचवादने उत्तिष्ठति। सुमंत बालक है, वह सुबह में 5 बजे उठता है। सार्धषड्वादने सूर्य नाम नमस्कारम करोति। सार्धषड्वादने सूर्य नमस्कारम करोति। सः प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारम करोति। सः प्रतिदिनं गृहपाठम अपि करोति। सुमंतः उत्तमः बालकः। सुमंत एक बालक है। सह सुबह में 5 बजे उठता है। सार्ध षड्वादने यानी 6:30 बजे सूर्य नमस्कार करता है। वह रोज सूर्य नमस्कार करता है। वह रोज गृहपाठ भी करता है। सुमंत अच्छा लड़का है। तरी एकैकं वाक्यं श्रुण्मः, प्रश्नं पृच्छामः, उत्तरं वदामः। यदा अहम् उत्तरं वदामि तदा भवन्तः अपि उत्तरं वदन्तु। सुमन्तः प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठति। सुमन्तः कदा उत्तिष्ठति? सुमन्तः प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठति। सुमन्तः सार्धषड्वादने सूर्य नमस्कारं करोति। सुमन्तः कदा सूर्य नमस्कारं करोति? सुमन्तः सार्धषड्वादने सूर्य नमस्कारं करोति। सः प्रतिदिनं गृहपाठं करोति। सः प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करोति। सः कदा सूर्य नमस्कारं करोति? सः प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करोति। सः प्रतिदिनं गृहपाठम् अपि करोति। सः गृहपाठं कदा करोति? सः प्रतिदिनं गृहपाठं करोति। सुमन्तः उत्तमः बालकः। सुमन्त बहुत अच्छा लड़का है। सुमन्तः 5 वादने उत्तिष्ठति। सुमन्तः सूर्य नमस्कारं करोति। तर्हि प्रथमं सुमन्तः उत्तिष्ठति, अनन्तरं सूर्य नमस्कारं करोति। सः संस्कृत मन्त्रं वदति। सुमन्तः प्रातःकाले 5 वादने उत्तिष्ठति। सार्धषड्वादने सूर्य नमस्कारं करोति। सूर्य नमस्कार समये सः सूर्यं नमति, बीजमन्त्रं वदति, अनन्तरं सूर्य नमस्कारं करोति। तो क्या क्या हुआ? सुमंत 5 बजे उठता है, 6:30 बजे सूर्य नमस्कार करता है। पहले वह सूर्य को नमन करता है, फिर बीज मंत्र सूर्य नमस्कार का बीज मंत्र कहता है और उसके बाद सूर्य नमस्कार करता है यानी आसन करता है। सूर्य नमस्कार एवं भवति, बीज मंत्र अस्ति। सूर्य के 12 मंत्र ऐसे हैं बीज मंत्र के साथ। ॐ राम मित्राय नमः।

0: नमः ओम ह्रैं सवित्रे नमः ओम ह्रौं अर्काय नमः ओम ह्रः भास्कराय नमः ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। तर्हि ये है बीज मंत्र, सूर्य बीज मंत्र। सूर्य देवतायाः अनेकानि नामानि सन्ति। सूर्य देवता के बहुत सारे नाम है, यथा मित्रः, रविः, सूर्यः, और भी है, बाद में सुनेंगे। सूर्य देवतायाः अनेकानि नामानि भवन्ति, यथा मित्रः, रविः, सूर्यः इत्यादयः। भवन्तः सूर्य नमस्कारं कुर्वन्ति किम्? आम, मैंने सुना आम, बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? उत्तरं भवति आरोग्यार्थम्। तो अर्थ क्या हुआ? सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? सूर्य नमस्कार किस लिए? उत्तर होगा आरोग्य के लिए। कैसा बोलेंगे संस्कृत में? आरोग्यार्थम्। सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? आरोग्यार्थम्। और भी उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य देवता स्तुत्यर्थम्, सूर्य देवता के स्तुति के लिए। सूर्य देवता प्रीत्यर्थम्, सूर्य देवता प्रसन्न हो इसलिए। तो बोलिए, प्रश्न अस्ति, सूर्य नमस्कारः किमर्थम्? आरोग्यार्थम्। सूर्य देवता स्तुत्यर्थम्, सूर्य देवता प्रीत्यर्थम्। सूर्यः मित्रः, सः विश्वस्य मित्रः, सः प्रकाशं ददाति। सूर्य का एक नाम है मित्र, वह विश्व का मित्र है, वह प्रकाश देता है। वयं वदामः सूर्याय नमः, मित्राय नमः। यदा सुमन्तः सूर्यं नमति तदा वदति सूर्याय नमः। जब सुमन्त सूर्य को नमस्कार करता है तब बोलता है सूर्याय नमः। तो सुनिए, अभ्यास होता है ऐसे। सूर्यः अस्ति, सूर्याय नमः। गणेशः अस्ति, गणेशाय नमः। दुर्गा अस्ति, दुर्गायै नमः। सरस्वती अस्ति, सरस्वत्यै नमः। आज का प्रश्न है, सूर्य नमस्कार आप क्यों करते हैं? अभ्यासः अभवत्। इदानीं रामरक्षा स्तोत्र पठनम्। अस्मिन् सप्ताहे वयं श्री रामरक्षा स्तोत्रस्य श्लोक संख्या 11-15 पठामः।
1: श्री गणेशाय नमः,
2: श्री गणेशाय नमः।
1: पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः,
2: चारिणश्छद्मचारिणः।
1: न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः।
2: रामेति राम भद्रेति
1: रामचन्द्रेति वास्मरन् नरो न लिप्यते पापैर् भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जेत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम्। यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था सर्वसिद्धयः। वज्रपञ्जरनामेदम्
2: यो रामकवचं स्मरेत्
1: अव्याहताज्ञः सर्वत्र
2: लभते जयमङ्गलम्।
1: आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः।
2: तथा लिखितवान् प्रातः
1: प्रबुद्धो बुध कौशिकः।
0: इस सप्ताह में हम इन श्लोकों का अभ्यास करेंगे। अगले सप्ताह में हम श्लोक संख्या 16 से 22 तक के श्लोक बोल के उनका अभ्यास करेंगे। आज संभाषण का 12वां दिन चल रहा है। प्रश्न पूछने की कोशिश जारी रखिए। अब तक हमने 4 प्रश्नवाचक शब्द सीखे हैं। वो क्या है? किम, कुत्र, कति, कदा और आज का नया शब्द था किमर्थम। इन प्रश्नों का उपयोग करके प्रश्न जरूर करें, अभ्यास अपने आप हो जाएगा। इदानीं शांति मंत्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।
3: दुर्जनः

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वेणू दोन्ही 90.4 FM वरती तुम्ही ठेवून आहात. आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: प्रयोगशीलता का महत. सालों पहले को से पानी निकालना या हाथ की चक्की से आटा पीसना कितने मेहनत वाले काम होते थे, लेकिन आज वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा खोजे गए साधनों से ये सारे काम चुटकी भर में हो जाते हैं. प्रयोगों पर प्रयोग करके ही अचरज भरे चमत्कार किए हैं विज्ञान ने. किसी भी अचंभे में डालने वाली खोज के पीछे होती है खोजी के कामों में छिपी प्रयोगशीलता. जी हाँ, नए नए आविष्कारों को जन्म देने वाला महान गुण है प्रयोगशीलता. प्रयोगशीलता यानी साधारण कार्य को भी अलग अलग तरीकों से कर बेहतर परिणाम पाने की चेष्टा करते रहना. वस्तु या पदार्थों को विविध विधियों से उपयोग में लाकर नई नई चीजें बनाना. कठिन कार्य को बार बार कर उन्हें सरलता से करने की विधि इजाद करना. आंतरिक गुण और शक्तियों को उपयोग में लाकर आनंददायी अनुभव संजोना भी प्रयोगशीलता ही है. प्रकृति के नियमों और सृष्टि में छिपे गूढ़ रहस्यों का ज्ञान केवल प्रयोग से ही ज्ञात होता है. उन रहस्य से ही होते हैं नए आविष्कार. हजारों लोगों का भार खींचने वाली रेलगाड़ी, आसमान में उड़ने वाला विमान और अंधेरे को रोशनी में बदलने वाला बिजली का बल्ब इत्यादि सभी लगातार किए प्रयोगों की ही तो देन है. ऐसे ही पाकशाला में नए नए प्रयोगों से स्वादिष्ट व्यंजनों का जायका मिलता है. चिकित्सा जगत में निरंतर प्रयोगों ने ही लाइलाज बीमारी से लड़ने के लिए जीवनदायिनी औषधियां खोजी है और उन औषधियों से आयु सीमा भी बढ़ी है. कृषि क्षेत्र में निरंतर नवीन पद्धति के प्रयोगों ने फसल की उत्पादन में वृद्धि की है. ऐसे ही व्यवहार में नैतिक गुणों के प्रयोग यानी आचरण से चरित्र निर्माण होता है. एक योगी साधना में एकाग्रता के प्रयोग से ईश्वरीय शक्ति अर्जित कर लेता है. बापू गांधी के सत्य के प्रयोगों को भला कौन नहीं जानता. वास्तव में उन सत्य के प्रयोगों ने ही देश को आजादी दी. बिना प्रयोग के साधन संपत्ति और शक्ति नष्ट हो जाती है, जबकि प्रयोगशीलता से सुख के साधन खोजे जाते हैं. अतः प्रयोगशीलता को अपनाइए और कष्टदायी कामों से छुटकारा पाइए. ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं.

0: रेणुधुनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज़
1: के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम दक्षिण

0: कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने TVK को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले TVK ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMMK पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S. कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
5: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
7: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला। देशबंधु की सुर्खी है, गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: 94.4 FM वेणुधुनि के एलई कंसो पे आप ट्यून है और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनि 90.4 FM के एलई कंसो।

गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के फेवरेट शो बी रिलैक्स में। और आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु RJ आयुष के साथ। आज की इस प्यारी सी इवनिंग को और भी स्पेशल बनाते हुए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल एपिसोड डेडिकेटेड स्पेशली टू द मैजिक ऑफ म्यूजिक। टुडे विल एक्सप्लोर द हिस्ट्री पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मेलोडीज दैट हैव शेप्ड जनरेशंस। तो हो जाइए तैयार, सिट बैक एंड रिलैक्स और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

वेलकम बैक दोस्तों टू आवर चैनल वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू। और आज हम बात कर रहे थे द मैजिक ऑफ म्यूजिक, यानी म्यूजिक की उस जादुई दुनिया के बारे में। दोस्तों म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो इंसान के हर मूड को बदल सकती है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हम अपनी डेली लाइफ में रोज कहीं ना कहीं म्यूजिक सुनते ही हैं। चाहे हम घर पर हो, ऑफिस में हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, म्यूजिक हमारी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए शुरू करते हैं म्यूजिक के ओरिजिन से। देखिए एंशियंट सिविलाइजेशन से लेकर ट्रेबल चैंट्स तक म्यूजिक ह्यूमन एक्सप्रेशंस का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। लॉन्ग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक पीपल यूज्ड टू प्ले म्यूजिक विद हैंड्स एंड द सोर्सेज अवेलेबल इन देयर रिचुअल्स एंड सेलिब्रेशन। मतलब उनके जो रिचुअल्स होते थे पहले या सेलिब्रेशंस होते थे, लोग उसमें जो सोर्सेज अवेलेबल होते थे या हाथों का यूज करके म्यूजिक प्ले करते थे और सेलिब्रेट करते थे और कम्युनिटीज को कनेक्ट करते थे थ्रू मेलोडीज एंड रिदम। और अब जब बात म्यूजिक की हो रही है तो सुनाते हैं आपको दिल को छू जाने वाले गाने। तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE घन सुपर।

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में। यू हैव ट्यून्ड इनटू बेलगावी फर्स्ट रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसुम। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो बॉलीवुड म्यूजिक की जर्नी 1930s में इंडिया की फर्स्ट फिल्म अलम एरा से हुई, जिन्होंने म्यूजिक और सॉन्ग्स को अपनी स्टोरी बताने में यूज किया। कंपोजर्स लाइक नौशाद, SD बर्मन साहब, सी रामचंद्रन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी म्यूजिक। दे मेड मेलोडियस एंड सोलफुल म्यूजिक विद क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस। आपको बताएंगे कुछ और डिटेल्स भारत के गोल्डन म्यूजिक एरा की कुछ जबरदस्त गानों के बाद। तो सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे शो बी रिलैक्स में, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

दोस्तों गोल्डन एरा यानी हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का वो पीरियड जो बहुत ही चर्चित था, वॉज फ्रॉम 1950s टू 1970s। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें लोगों ने कई लेजेंडरी सिंगर जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी को विटनेस किया और ये बन गए थे द वॉइस ऑफ बॉलीवुड। द म्यूजिक कंट्रीब्यूटेड टू हैव अ क्लासिकल टच बट ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विद द डिफरेंट जॉनर्स इंक्लूडिंग कव्वाली एंड म्यूजिक इन्फ्लुएंस ट्यून्स। चलिए, और अब इतने लेजेंडरी सिंगर्स की बात हुई है तो सुनेंगे कुछ मनोरंजक गाने उसी स्टाइल में और देंगे जानकारी आपको म्यूजिक के बारे में और कैसे म्यूजिक ने शिफ्ट लिया 1980s में। तो सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

वेलकम बैक टू अवर शो बिरलैक्स और आप रेडियो के है वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसु। मैं आपका प्यारा दुलारा आरजे आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ और हम आज बात कर रहे थे द मैजिक ऑफ म्यूजिक थ्रू द इयर्स। तो जैसे कि मैंने आपको गोल्डन एरा के बारे में बताया, उसके बाद 1980s में म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा शिफ्ट आया जिसमें मॉडर्न अरेंजमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का उपयोग किया गया। म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे आरडी बर्मन साहब, बप्पी लहरी इंट्रोड्यूस फ्यूजन टू डिस्को बीट्स एंड पॉप एलिमेंट्स व्हिच बिकम्स मोर पॉपुलर इन दैट एरा। मतलब फ्यूजन किया गया डिस्को बीट्स का और पॉप एलिमेंट्स का, जिससे ये पीरियड बहुत ही चर्चित रहा। चलिए सुनते हैं आपको वही धमाकेदार म्यूजिक ताकि आपकी शाम और भी रंग बिरंगी हो जाए। आप कहीं जाइएगा मत और सुनते रहिएगा वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनसु।

कर रहे हैं द म्यूजिकल एरास ऑफ बॉलीवुड। हमारा शो बी रिलैक्स चल रहा है और आप सुन रहे हैं वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। 1990s में म्यूजिक के लिए एक मेलोडी ड्रिवन ईयर रहा, जिससे गाने कंपोज तो किए गए लेकिन अब उस म्यूजिक को क्रिएट करने के लिए यूज किए गए कीबोर्ड्स एंड सिंथेसाइजर्स। सिंथेसाइजर्स एक तरीके के इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। इस इरा में म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे नदीम श्रवण, अनु मलिक साहब, जतिन ललित, इन्होंने कई हार्ड स्ट्रिंग म्यूजिक क्रिएट किए। और वहीं जब बॉलीवुड म्यूजिक 2000s में एंटर किया, इट एक्सपीरियंस्ड अ फर्दर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब म्यूजिक बहुत अलग अलग जॉनराज में बढ़ गया, जैसे रॉक एलिमेंट, पॉप एलिमेंट, वो सब में, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक, फ्यूजन एंड रिमिक्सेस। और इस इरा के कई गाने और म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे AR रहमान, शंकर एहसान लॉय और प्रीतम ने भी काफी पॉपुलैरिटी कमाई। चलिए आपको सुनाते हैं इसी हार्ड स्ट्रिंग इरा से कुछ गाने। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE का नसू पर।

आफ्टर ऑल दिस इयर्स बिटवीन 2000 टू 2010 एक ऐसा एरा आया जहां आइटम सॉन्ग्स डांस नंबर्स काफी पॉपुलर हुए। आपने भी कई सारे डांस नंबर्स और ऐसे आइटम सॉन्ग्स पे जो है ठुमके जरूर लगाए होंगे। ऑल दीज हाई एनर्जी ट्रैक्स ऑफन फीचर्स कैची बीट्स एंड बिकम मेजर अट्रैक्शंस फॉर द पीपल एंड द यूथ। मतलब ये यूथ में बहुत पॉपुलर हुए थे और आप देखा होगा पार्टीज और जो भी होते क्लब्स वगैरह में गानों का बहुत यूज हुआ था। ऑल दीज इयर्स बॉलीवुड म्यूजिक काफी ज्यादा इवॉल्व कर चुका है विद द टच ऑफ फर्दर डाइवर्सिफिकेशन एंड डाइवर्स म्यूजिक स्टाइल्स। कंपोजर्स जो है हर म्यूजिक पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजन हिंदी म्यूजिक पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ऑडियंस को एक अलग एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आपको सुनाते हैं ऐसे ही कैची बीट्स और डांस नंबर्स, तो टेंशन को कर दीजिए एकदम बाय बाय और सुनते रहिए हमारा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसुपर।

नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर। आज के इस एपिसोड में हमने बात की हाउ म्यूजिक हैज इवॉल्व्ड बाय टाइम एंड हाउ इट हैज क्रिएटेड अ बिग स्पेस इन आवर हार्ट। मतलब म्यूजिक इतना इवॉल्व होने के बाद हमारे दिलों में जाकर बस गया। गाने हमारी जिंदगी में एक बहुत ही जरूरी हो गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर गाना सैड है तो हम सैड हो जाते हैं, अगर गाना हैप्पी है तो हम खुश हो जाते हैं। वी ऑल हैव अ प्लेस रिलेटेड एंड प्लेस बेस्ट प्लेलिस्ट एट अवर फोन्स। जैसे मैं आपको कुछ प्लेलिस्ट के नाम बताता हूँ, जैसे जिम प्लेलिस्ट जहाँ एकदम हाई म्यूजिक हिप हॉप आप लोग सुनते हैं, ट्रेवल प्लेलिस्ट, ओल्ड इरा म्यूजिक, लव मैशअप, रैप्स और भी बहुत सारी ट्रांस म्यूजिक्स। ओके, और इन्हीं गानों और म्यूजिक को हम अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनते रहिए बी रिलैक्स आरजे आयुष के साथ ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर। विल सी यू सून, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। सुनते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार को आपका कीमती समय दीजिए।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुधोनी 90.4 KLE कनसू और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: याद

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तुम मगर साथ देने का वादा करो, हमराज मूवी का ये सॉन्ग है। ये फिल्म आई थी 1967 में। तो चले सुनते खूबसूरत सा गीत, आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 KLE कनेक्शन।

अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जिसके बोल है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। मुकद्दर का सिकंदर मूवी का ये सॉन्ग है, म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी का। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो फिल्माया गया है अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और रेखा और राखी पे। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग। आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 KLE कनसु।

ओ मेरे दिल के चैन, ये गाना हम अभी सुनेंगे जो है किशोर कुमार जी की आवाज में। मेरे जीवन साथी मूवी का ये सॉन्ग जो मूवी आई थी 1972 में, राजेश खन्ना और तनुजा के ऊपर। चले सुनते वेणुधुनी 90.4 KLE कनसूबे।

दोस्तों, जब जब फूल खिले का अगला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जिसके बोल है ये समा समा है ये प्यार का। शशि कपूर और नंदा का अभिनय। ये फिल्म आई थी 1965 में। म्यूजिक डायरेक्टर है कल्याण जी आनंद जी। तो चले सुनते लता मंगेशकर जी की आवाज में खूबसूरत सा सॉन्ग ये समा समा है ये प्यार का।

अगला गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जिसके शब्द है हमने सनम को खत लिखा। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में शक्ति मूवी का ये सॉन्ग जो फिल्म आई थी 1982 में अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल का भी अभिनय। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग हमने सनम को खत लिखा, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर है आर डी बर्मन और जिसके शब्द लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे आया सावन झूम के, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, जो फिल्म है आया सावन झूम के। ये फिल्म आई थी 1969 में, आशा पारेख और धर्मेंद्र का अभिनय। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 KLE कनसा।

90.4 वेणु धोनी के LE कनसूबे आप ट्यून है। यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जिसके बोल है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा नगमा आपके लिए। इज्जत मूवी का ये सॉन्ग है, 1968 में ये मूवी आई थी। तो चले सुनते ये खूबसूरत सा सॉन्ग। आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 KLE कनसूबे।

ओनली 90.4 के LE कनसोपे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

अनुभूमि 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे

जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादव के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यूने यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

दे रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए जो फिल्माया गया है जीते

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।